village of Hindustan. Malaysia, Africa, at Hindustan. एक औरत आम औरता वाली औरत कहने देखो हम आ गए ने उठा वाले भी आ गए ने।